0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपने सुनछेन नमस्कार कोलकाता, शुधुमात्र 107 FM रेनबोते।
4: নটার ঘরে পা রাখা মানে নমস্কার কলকাতা, তৃতীয় ঘন্টায় পা রাখা। আর সেই তৃতীয় ঘন্টায় পা রাখা মানে কিন্তু তিন এককে তিন গানের হ্যাট্রিক। না আজকে কিন্তু না কোনোরকম কি আর করা যাবে, শুধুমাত্র মুখে মুখে বলা এবং সেই সঙ্গে কিন্তু গানগুলো একেবারে শুনিয়ে দেওয়া, আপনাদের কানে পৌঁছে দেওয়া। দেখুন তো এই গানটা শুনলে কেমন লাগে।

जी हाँ दोस्तों, आई लव यू बिल्कुल प्यार भरे इस्तकबाल के साथ आपकी दोस्त सविता आप सभी का करती है अभिनंदन स्वागत। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी के इस्तकबाल और अभिनंदन स्वागत के साथ हम हाजिर हो चुके हैं 107 FM रेनबो पर लेकर कार्यक्रम नॉन स्टॉप कपशप, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सविता। और पूरा एक घंटा हम रहने वाले हैं और खूबसूरत नगमों की बरसात आपके साथ रिमझिम रिमझिम होने वाली है। तो पहले सुनते हैं गीत और उसके बाद और क्या करेंगे बातें ये हम बताएंगे। ढेर सारी बातों के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत तो कर ही चुके हैं।

जी हाँ दोस्तों, चुरा लो ना दिल मेरा। बिल्कुल, आप में से, हम में से हर एक इंसान की ये इच्छा होती है कि हमारा दिल चोरी हो जाए। भला इस दिल को चोरी करवाना क्यों हम सभी चाहते हैं? क्योंकि कोई ना कोई हमारे दिल के इतने करीब होता है कि हम सब कुछ उस पर अपना हार देते हैं, और यही एक चोरी है जो सबको अच्छी लगती है। और दोस्तों, हमें भी अच्छी लगती है क्योंकि आपका दिल हमने जो चुराया है और हमारा दिल आपने, और यही वजह है कि नॉन स्टॉप गपशप पर हम चले आते हैं हर दिन सुबह 10 बजे कार्यक्रम 107 FM रेनबो पर। आपकी दोस्त सविता एक बार फिर से करती है स्वागत। और दोस्तों, बात करें यदि हम इतिहास की, जी हाँ, एकांत खामोशी, साए साए करती हवा, ठहरा हुआ जीवन, सब कुछ ऐसा ही लगता है जब हम किसी सूने खंडर को देखते हैं, टूटी मीनारों को देखते हैं, किलों के बिखरे ढहते हुए अवशेषों को देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो दफन हुए किस्से एक दास्तां सुना रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो जो तारीख थी, वो जो दिन था, सब अपने आप में समेटे हुए है, पूरा का पूरा इतिहास, और लग रहा है जैसे कि वो जी उठा है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही लगता है जब किसी ऐतिहासिक

अनपढ़ जाते हैं या फिर जब इतिहास दोहराया जाता है, कोई आविष्कार होता है, कोई सदी जी उठती है, गौरव के वो पल होते हैं। लेकिन कई बार ऐसी किस्से भी हो जाते हैं जिन पर कि सदियां नाज नहीं, मतलब अपने आप पर मातम करती हैं। लेकिन इतिहास तो इतिहास है, वो तारीख चाहे नाज करने की हो या फिर मलाल करने की, इतिहास में तो दर्ज हो जाती है। तो हम बात करते हैं 1933 की। 8 मई के दिन 1933 में महात्मा गांधी ने आत्मशुद्धि के लिए 21 दिनों का उपवास शुरू किया। हरिजन आंदोलन की मदद के लिए एक साल का अभियान शुरू हुआ। 8 मई 1943 को ब्रिटिश लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता पैट वॉर्कर का जन्म हुआ। साथ ही 1958 में आयरिश उपन्यासकार और नोबेल पुरस्कार विजेता रॉडी डॉयल का जन्म हुआ। दोस्तों, इसके साथ ही 1984 फ्रांस ने आइसलैंड में परमाणु परीक्षण किया। 1997 में चीनी सदर्न एयरलाइंस की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे। 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ कर्मियों की एक पत्थरबंद गाड़ी बम विस्फोट में उड़ गई थी। 2013 में हिमाचल प्रदेश में एक ओवरलोड बस नदी में गिर गई थी। और दोस्तों, आज के दिन खास दिन कुछ हैं, जैसा कि पहला तो है विश्व रेड क्रॉस दिवस। हर साल 8 मई को रेड क्रॉस की स्थापना संस्थापक की जयंती के उपलक्ष में ये मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट ने, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक थे, उनका जन्म हुआ 1828 में जिनेवा में। उन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा एक और खास दिन है, वो क्या दिन है बताऊंगी। पहले तो आपका भी दिल कर रहा होगा ना कि हम गाना सुना दें पहले आपको, तो सुनवा देते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, नॉन स्टॉप गपशप में एक बार फिर से आपकी दोस्त आ गई है और हम आपको आज की खास खबर बताएं कि आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया मैराथन का आयोजन। जी, आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में भाग लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आकाशवाणी के महानिदेशक भी इस अवसर पर मौजूद थे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश की सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन, जनोपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इस मैराथन के आयोजन से आकाशवाणी ने न केवल अपनी गौरवशाली संस्कृति और अस्मिता का उत्सव बनाया बल्कि स्वास्थ्य, स्फूर्ति, एकजुटता और लोक संपर्क का संदेश भी प्रसारित किया। जी हाँ, हम सभी आकाशवाणी की इस सेवा के लिए दोस्तों आभारी भी रहते हैं और ये हमारी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी यानी हमारी लाइफ लाइन है।

जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपकी दोस्त सविता करती है स्वागत और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। जी हाँ, आज है थैलेसीमिया दिवस भी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाला विश्व थैलेसीमिया दिवस यह दिन थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनसे पीड़ित रोगियों के साथ साथ उनकी देखभालकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा राष्ट्रीय नारियल क्रीम पाई दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस मिठाई प्रेमियों के लिए मीठे मलाईदार नारियल क्रीम पाई का आनंद लेने और जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा एक और दिन है दोस्तों कि राष्ट्रीय किसी को कप केक दें, यानी यह दिवस लोगों को दोस्तों, परिवार और यहाँ तक कि अजनबियों को कप केक देकर उनकी ज़िंदगी में खुशी और मिठास फैलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मीठी मीठी बात करके ही हम किसी की ज़िंदगी में मिठास भी घोल सकते हैं।

बचकर 42 मिनट 13 सेकंड यानी काफ़ी देर का, करीब हमने 45 मिनट का सफ़र तय कर चुके हैं और थोड़ी सी देर और बाकी है, लेकिन कुछ साझा भी तो करना है ना जी। 8 मई 2026 को कोलकाता में होने वाली कौन सी वो सांस्कृतिक या साहित्यिक गतिविधियां हैं उनके बारे में भी तो थोड़ी सी बातें साझा कर लेते हैं दोस्तों। 8 मई 2026 को कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने की संभावना है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति का मुख्य हिस्सा है। KCC में रविंद्र जयंती समारोह होने की संभावना है। 8 मई 2026 को शाम 6 बजे से रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन और संगीत पर आधारित विशेष कार्यक्रम शिशु तीर्थ और पारा साथी आयोजित किया जाएगा, जिसमें ये आप देख सकते हैं जिसको, और सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम 8 मई 2026 में शाम 5:30 बजे से तपन थिएटर में जन्मदिने नाटक गाने, जन्मदिन पर नाटक और गीत कार्यक्रम आयोजित होने की भी सूचना है। इसके अलावा 8 से 9 मई के आसपास कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में कवि प्रणाम, कवि को नमन कार्यक्रम होते हैं, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं पर और हिंदी बंगाली में चर्चा और गायन होता है। इसके अलावा शाम को 8 मई 2026 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में टेनिडा से संबंधित साहित्यिक व नाटकीय कार्यक्रम होने की भी संभावना है। दोस्तों 8 मई को सूफी सैटरडे का आयोजन होगा, जहां सूफियान लाइव प्रदर्शन करेंगे। यह सेक्टर वी में एक शानदार शाम बिताने के लिए बेहतरीन जगह है। इसके अलावा 8 मई के आसपास कोलकाता के विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में कई ट्रेड फेयर्स जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होने वाले हैं। तो दे दी ना आपको ढेर सारी खबर, आप चाहे जहां भी अपना प्लान कर सकते हैं और इन कार्यक्रमों का आनंद उठा सकते हैं। फिलहाल हम तो आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत।

मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। दोस्तों कई बार कहा जाता है कि यदि हम रोते हैं तो कहते हैं ना कि आंसू बहाने से क्या फ़ायदा, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि आंसुओं में भी वजन होता है। जी हाँ, कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता, एक भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। आइए सुनते हैं अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, आपने ये गीत सुना फिल्म त्रिशूल से अनवर और आशा भोसले की आवाजों में। और वक्त हो चला है कि अब हम आपसे ले लें विदा। हम मुलाकात करेंगे आपसे अभी थोड़ी ही देर में 11:10 पर FM गोल्ड यानी खरा सोना पर। तब तक के लिए आपकी दोस्त सविता को दीजिए इजाजत। जी हाँ, 11 तारीख को FM गोल्ड यानी हम नॉन स्टॉप गपशप पर फिर एक बार आपके साथ मिलने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: সেমিয়া একটি জিনবাহিত অসুখ। বাবা এবং মায়ের ত্রুটিপূর্ণ জিন থাকলে ছেলে ও মেয়ের থ্যালাসেমিয়া অসুখ হতে পারে। বিবাহের পূর্বে থ্যালাসেমিয়া টেস্ট করে জেনে নিন আপনি থ্যালাসেমিয়ার বাহক কিনা। দুজন বাহক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না। জনস্বার্থে প্রচারিত ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ হিম্যাটোলজি অ্যান্ড ব্লাড ট্রান্সফিউশন।
4: Hello friends! Oh yes, welcome to the Rainbow Rhythms, and I'm here conducting the program from

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर होगी 107 एफएम रेनबो पर लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम तीन का तड़का। चिड़की के घर में समय हो गया दोस्तों 3:04, और मैं हाजिर हो गई हूँ यहाँ बॉलीवुड हॉलीवुड और फिल्मी दुनिया के कुछ फिल्मी खबरों के साथ। तो चलिए तीन का तड़का की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले शुरू करते हैं इस गाने से।

तो दोस्तों चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले तड़के की। हाँ जी हाँ, ओटीटी की दुनिया में एक बार फिर गुजने वाली है खाकी वर्दी की आवाज़, क्योंकि सैक्रेड गेम्स के बाद अब सैफ अली खान लौट रहे हैं कैसे पुलिस अफसर के किरदार में, जो सिर्फ अपराधियों से नहीं अपने टूटते हुए अंदरूनी संसार से भी लड़ रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर की नई क्राइम ड्रामा कर्तव्य का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है। ट्रेलर देखते ही साफ हो जाता है कि कोई साधारण पुलिस कहानी नहीं होने वाली, यहाँ गोलियों से ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं फैसले और वर्दी से ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इंसान बने रहना। फिल्म में सैफ बने पुलिस अफसर पवन, जिसकी ज़िंदगी एक पत्रकार की सुरक्षा में हुई चूक के बाद पूरी तरह उलझ जाती है, और ऊपर से सिस्टम का दबाव, मीडिया के सवाल और घर की बिखरती दीवारें। ट्रेलर में एक तरफ सैफ की आंखों में गुस्सा दिखता है तो दूसरी तरफ थकान और अपराध बोध भी साफ नजर आता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म प्रोड्यूस किया है शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस ने, ऐसे में फिल्म को लेकर बज और भी बढ़ गया है। फिल्म में रासिका दुग्गल, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, मनीष चौधरी और सौरभ द्विवेदी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। और सैफ ने खुद कहा कि पवन ऐसा किरदार है जो हर वक्त खुद से लड़ता रहता है, एक तरफ उसकी सोच और दूसरी तरफ दुनिया की उम्मीदें और तीसरी तरफ वो चीज़ें जिन्हें बचाने के लिए उसे हर हाल में खड़ा रहना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आप पवन अपने कर्तव्य को निभा पाएंगे या फिर यही फर्ज उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से तोड़ देगा। फिलहाल इंतज़ार करते हैं 15 मई का, जब ये OTT पर रिलीज़ होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हमारा अगला गाना फटाफट सुन लेते हैं।

0: तो दोस्तों अब चलिए दूसरी तरकी की ओर सीधे बढ़ते हैं। बॉलीवुड में आए एक नई आई ऑन स्क्रीन जोड़ी बनने की खबर ने फैंस के एक्साइटमेंट में बढ़ा दी है। खबरें हैं कि जानवी कपूर और शाहिद कपूर पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आ सकते हैं और वो भी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का निर्देशन करेंगे अमित शर्मा, जो इससे पहले दिल छू लेने वाली कहानी और एंटरटेनिंग फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस बार वो मॉडर्न रिलेशनशिप्स की उलझनों को हल्के फुल्के लेकिन इमोशनल अंदाज में पेश करने वाले हैं। फिल्म की कहानी आज की रिलेशनशिप जनरेशन पर आधारित बताई जा रही है, जहां प्यार, कन्फ्यूजन और ओवरथिंकिंग है और ढेर सारे इमोशनल ट्विस्ट्स भी। यानी रोमांस के साथ कॉमेडी का ऐसा तड़का जिसे युवा ऑडियंस खुद को आसानी से कनेक्ट कर पाएगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जानवी कपूर और शाहिद कपूर की जोड़ी अब तक कभी स्क्रीन पर साथ नहीं दिखी। शाहिद का चार्म और जानवी की फ्रेश एनर्जी, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा, इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी शुरू हो चुकी है। और सूत्रों की माने तो जानवी फिल्म की फीमेल लीड रोल के लिए बातचीत कर रही है और मेकर्स भी इस नई जोड़ी को लेकर काफी उत्साहित है। हालांकि अभी तक फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन इंडस्ट्री में ये प्रोजेक्ट की चर्चा तेज हो चुकी है। वही शूटिंग को लेकर भी अपडेट सामने आई है। कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 2026 के दूसरे हिस्से में शुरू हो सकती है, क्योंकि फिलहाल दोनों सितारे अपने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में काफी व्यस्त हैं। अब अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है तो रोमांस और कॉमेडी पसंद करने वाले दर्शकों के लिए एक बिल्कुल नई और फ्रेश जोड़ी देखने को मिल सकती है और शायद बॉलीवुड को मिल जाए अगली अनएक्सपेक्टेड हिट पेयर। फिलहाल इंतजार तो रहेगा इस अनएक्सपेक्टेड हिट पेयर का, पर उससे पहले आगे जी के जो तड़के हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: थैलासेमिया एक थी जीन बाहितो

तो दोस्तों, अब जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। अगर आप श्रीरंग में गुजराती सुपरहिट लालू कृष्णा सदा सहायते मिस कर दिए तो अब आपके लिए खुशखबरी है। बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करने वाली ये चर्चित फिल्म अब सीधे आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी 17 मई 1 बजे पर। इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है। थिएटर और OTT पर धमाल मचाने के बाद अब लालू टीवी ऑडियंस का दिल जीतने के लिए तैयार है। फिल्म में रिलीज होते ही दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से जबरदस्त तारीफ बटोरी थी। इसकी इमोशनल कहानी, भक्ति से जुड़ा संदेश और इंसानी संघर्ष को दिखाने का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते ये हाल ही के समय की सबसे चर्चित गुजराती फिल्मों में शामिल हो गई। और अब खास बात यह है कि फिल्म सिर्फ गुजराती में ही नहीं बल्कि हिंदी में भी दिखाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसकी भावनाओं और सांस्कृतिक जुड़ाव को महसूस कर सके। कांतार और महावतार, नरसिम्हा जैसी धार्मिक और भावनात्मक फिल्मों को शानदार रिस्पांस मिल चुका है टीवी पर। वैसे भी अब लालो भी उसी कड़ी में शामिल हो गई है। फिल्म की कहानी लालजी धनसुख परमार नाम के एक साधारण रिक्शा चालक के इर्द गिर्द घूमती है जो अचानक एक फार्म हाउस में फंस जाता है। वहां उसे अपने अतीत, दर्द और जिंदगी की कठिन सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसे मुश्किल सफर में भगवान श्री कृष्ण उनका मार्गदर्शन करते हैं और उसे जिंदगी को नए नजरिए से देखने की ताकत देते हैं। यही भावनात्मक सफर दर्शकों को दिल छू लेती है। फिल्म में करण जोशी ने लाल जी का किरदार निभाया जबकि सुहाग गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के रोल में नजर आए। उनके किरदार को दर्शकों ने खूब सराहा। साथ ही रिवाराज और मिष्टी कदेचा भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दी हैं। फिल्म के निर्देशन अंकित साखिया ने किया। दिलचस्प बात यह है कि लालू कृष्ण सदा सहायते पहले ही OTT पर आ चुकी है, 6 मार्च से स्ट्रीम हो रही है, लेकिन अब टीवी प्रीमियर के जरिए ये कहानी और बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने वाली है। कुल मिलाकर अगर आपको ऐसी फिल्म देखनी पसंद है जिनमें भक्ति हो, इमोशन हो और जिंदगी को देखने का नया नजरिया हो तो लालू आपके वीकेंड पर परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर साबित हो सकती है। फिलहाल टाइम हो गया है गाना सुनने का, तो चलिए बैक टू बैक दो गाने सुन लेते हैं।

दोस्तों, तीन का तड़का चल रहा है 107 एफएम रेनबो पर। जी हाँ, एफएम रेनबो है ये, और आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। और चलिए अब धीरे धीरे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलेंगे सीधे, किस तरफ चलेंगे सीधे, हम हमारे अगले तड़के की ओर। डायरेक्टर आदित्य धर, रणवीर सिंह और पूरी धुरंधर टीम ने पिछले 2 सालों में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि पूरी इंडस्ट्री देखती ही रह गई। क्यों है ना? तो पहले दिसंबर 2025 में रिलीज हुई धुरंधर, जिसने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली, और फिर 19 मार्च 2026 को आई धुरंधर 2, और इस फिल्म ने तो कमाई के सारे रिकॉर्ड ही हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है, यानी सिर्फ 2 फिल्मों के दम पर यह फ्रेंचाइज 3000 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। और इतने बड़े ब्लॉकबस्टर के बाद हर फैन के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या अब बनेगी धुरंधर 3? फिलहाल मेकर्स ने तीसरे पार्ट को लेकर आधिकारिक ऐलान बिल्कुल नहीं किया, लेकिन हाल ही में ऐसा बयान सामने आया है जिसने फैंस की उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है। धुरंधर के निर्माण जिस स्टूडियो ने किया है, उन्होंने मिलकर कहा है कि जी ये ज्योति देशपांडे जो है, उन स्टूडियो की जो हेड है ज्योति देशपांडे, उन्होंने संकेत दिया है कि धुरंधर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया जा रहा है और टीम के पास अभी भी कुछ स्पेशल बाकी है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि मामला धुरंधर 3 का है या किसी स्पिन ऑफ का, लेकिन इतना जरूर है कि उनके बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल तेज कर दी है। इस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी ताकत रही है कि इसका बड़ा स्टारकास्ट और हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे सितारों ने अपने दारों से जबरदस्त असर छोड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स का स्पेशल सरप्राइज आखिर क्या है, लेकिन इतना तय है कि धुरंधर का तूफान अभी थमा नहीं है। फिलहाल इस तूफान के इंतजार में हम सब जरूर रहेंगे, पर सुन लेंगे हमारा अगला गाना भी।

तो दोस्तों बात करते हैं हॉरर फ्रेंचाइज रागिनी एमएमएस के बारे में। जी हाँ, रागिनी एमएमएस एक बार फिर वापसी की तैयारी में है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ डर का नहीं बल्कि बड़े स्टार कास्ट और नए ट्विस्ट का भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लैमरस और रोमांटिक किरदारों के लिए पहचाने जाने वाली नरगिस फखरी अब रागिनी 3 में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाली है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस बार वो किसी स्टाइलिश या रोमांटिक अवतार में नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देंगी। फिल्म में पहले ही जुनैद खान और तमन्ना भाटिया को कास्ट किया जा चुका है और अब नरगिस की एंट्री ने इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा और तेज कर दी है। इस फिल्म के निर्देशन करेंगे शशांक घोष, जिन्होंने 2011 में आई पहली रागिनी एमएमएस को डायरेक्ट किया। फिल्म को बालाजी मोशन पिक्चर बालाजी टेलीफिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रागिनी 3 का सुपरनेचुरल थ्रिलर होगी, यानी पुराने पार्ट्स की तरह इसमें भी हॉरर, रहस्य और डर का तगड़ा मिश्रण देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज में है और मेकर्स ने कहानी को लेकर ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। वैसे रागिनी फ्रेंचाइज का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। पहले फिल्म रागिनी एमएमएस में राजकुमार राव और कैनास मोतीवाला नजर आए थे, वहीं 2014 में आई रागिनी एमएमएस 2 में सनी लियोन और अपने बोल और ग्लैमरस अंदाज में खूब सुर्खियां बटोरी थी। उधर जुनैद इन दिनों अपनी हालिया फिल्म एक दिन को लेकर काफी चर्चा में है। इस फिल्म में उनके साथ साई पल्लवी भी नजर आई। हालांकि काफी प्रमोशन के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और शुरुआती दिनों में इसकी कमाई काफी धीमी रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हॉरर फ्रेंचाइज रागिनी 3 जुनैद के करियर को नई रफ्तार दे पाएगी या नरगिस फखरी का खाकी अवतार दर्शकों को चौंकाने में सफल रहेगा। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम सुन लेते हैं फिल्म जर्सी से हमारा अगला गाना।

तो चलिए आज रिलीज हुई फिल्म दादी की शादी जो रिलीज हुई है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फिल्म दादी की शादी आज सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो चुकी है लेकिन इसे दर्शकों से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस कॉमेडी ड्रामा में कपिल शर्मा, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर, सहानी और सादिया खतीब जैसे कलाकार हैं। हालांकि कमजोर कहानी और साधारण निर्देशन के कारण ये फिल्म दर्शकों पर प्रभाव डालने में असफल रही। इसे आशीष आर मोहन ने निर्देशित भी किया। कहानी में एक नया दृष्टिकोण है लेकिन इसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत बिल्कुल नहीं किया गया है। कहानी किस बारे में? कहानी है टोनी नामक एक युवक की जिसे कपिल शर्मा ने निभाया। टोनी अपने मंगेतर कन्नू से सगाई करने वाला होता है लेकिन उसी दिन उसे पता चलता है कि कन्नू की दादी विमला 70 वर्ष की उम्र में शादी करने जा रही है। यह सुनकर टोनी और का परिवार सगाई तोड़ देता है। इसके बाद कहानी शिमला में आगे बढ़ती है जहां दादी की शादी के पीछे के रहस्य को धीरे धीरे उजागर किया जाता है। कहानी सुनने में दिलचस्प लगती है लेकिन इसे पर्दे पर उतनी ही बोरिंग तरीके से पेश किया गया है। फिल्म का पहला भाग काफी बोरिंग है, कई दृश्य अत्यधिक लंबे और कहानी की गति भी धीमी है। दूसरे भाग में कुछ भावुक और अच्छे पल दिखाई देते हैं लेकिन तब तक फिल्म अपनी पकड़ खो चुकी होती है। 150 मिनट का रन टाइम भी फिल्म की एक बड़ी कमी है। कई दृश्यों को आसानी से छोटा किया जा सकता था। डायलॉग्स में वो प्रभाव नहीं जिसकी उम्मीद कपिल शर्मा से की जाती है। और नीतू सिंह ने फिल्म में संतुलित प्रदर्शन किया। वो स्क्रीन पर खूबसूरत नजर आती है और अपने किरदार में गरिमा बनाए भी रखती है लेकिन फिल्म उन्हें ज्यादा प्रभावशाली मौके नहीं देती। कपिल शर्मा हल्के फुल्के दृश्य में अच्छे लगते हैं लेकिन कमजोर लेखन और उनकी कॉमिक टाइमिंग का सही उपयोग नहीं हुआ है। और रिद्धिमा कपूर के डेब्यू की चर्चा भी हो रही थी इस फिल्म से। वो आत्मविश्वासी और स्टाइलिश जरूर नजर आती है लेकिन अभिनय में अभी उन्हें काफी सुधार की आवश्यकता है। उनके एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी कई जगह बहुत कमजोर है और साउथ के एक्टर आर शरत कुमार अपने छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल में ध्यान आकर्षित करते हैं जबकि निकहत खान भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रही है। तो यदि आप केवल हल्की फुल्की पारिवारिक ड्रामा फिल्म देखने का मन बना रहे हैं और कलाकारों के प्रशंसक हैं तो आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं लेकिन अगर मजबूत कहानी, दमदार कॉमेडी, यादगार भावनाओं की तलाश में है तो ये फिल्म आपको निराश कर सकती है। कुल मिलाकर ये फिल्म 2.5 की रेटिंग अभी तक मिलती हुई दिख रही है। आगे क्या होने वाला है वो तो आगे ही पता चलेगा।

लिए बात करते हैं और फिल्म का नाम है आखिरी सवाल। जी हाँ, संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म आखिरी सवाल इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आखिरकार सेंसर बोर्ड से फिल्म को मंजूरी भी मिल गई और इसके साथ ही ट्रेलर रिलीज डेट भी सामने आ गई है। पहले फिल्म का ट्रेलर 30 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाला था, लेकिन कुछ औपचारिक प्रक्रियाओं के चलते इसमें देरी होगी। अब मेकर्स ने घोषणा की है कि आखिरी सवाल का ट्रेलर 8 मई को रिलीज किया जाएगा। हाल ही में निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, कल देश सच्चाई का गवाह बनेगा, इंतजार खत्म। इस पोस्ट के बाद से ही फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक अभिजीत मोहन वारंग ने किया। वहीं इसे निखिल नंदा, पुनीत नंदा, दीपक सिंह, गौरव दुबे, उज्ज्वल आनंद और संजय दत्त ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में तमाशी चक्रवर्ती, अमित साध, नीतू चंद्रा, त्रिधा चौधरी, मृणाल कुलकर्णी और हरसिमरन ओबेरॉय जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। संगीत मोंटी शर्मा ने दिया, जबकि कहानी और संवाद उत्कर्ष नैथानी ने लिखे हैं। आखिरी सवाल 15 मई को हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं संजय दत्त के वर्क फ्रंट की बात करें तो आने वाले समय में वो वेलकम टू द जंगल, बाप और खलनायक रिटर्न्स जैसी फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। तो फिलहाल संजय दत्त के नाम जो लिस्ट है वो काफी लंबी है और काफी इंटरेस्टिंग भी। फिलहाल क्या होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं हमारा अगला गाना।

तो दोस्तों फिलहाल चलिए मौसम का मिजाज अब थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी अभी आई मौसम यानी कि वेदर रिपोर्ट हाथ में आ गई है, तो दिख रहा है कि मौसम का मिजाज थोड़ा नरम और थोड़ा गर्म दोनों होने वाला है। तो अभी ईस्ट बर्धवान में करीबन पारा 32 डिग्री है, पर भाई साहब बाहर निकलने पर 36 जैसी गर्मी का एहसास कराता है और आज अधिकतम तापमान 34 तक जा सकता है, तो पानी साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ईस्ट बर्धमान में ही अभी है एक ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी भी, मौसम विभाग की तरफ से एक ऑरेंज वार्निंग आई है। अगले 2-3 घंटों में ईस्ट बर्धमान के कुछ हिस्सों में तेज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही

करीबन 58% है। रात होते होते आसमान साफ हो जाएगा, तापमान 22 डिग्री तक रहने की संभावना बताई जा रही है। और ये था मौसम का हाल चाल। फिलहाल चलिए हमारे आखिरी तरके की ओर हम चलें क्या? एकदम चलते हैं। दोस्तों आज मेगा वीकेंड फिल्म लवर्स के लिए किसी फिल्म मेले से कम नहीं होने वाला है। शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 अलग अलग जॉनर की फिल्में आमने सामने भिड़ने जा रही हैं। कहीं जबरदस्त एक्शन है, कहीं इमोशन, कहीं कॉमेडी, तो कहीं रहस्य और सस्पेंस। यानी दर्शकों के पास इस बार एंटरटेनमेंट के ढेर सारे ऑप्शन होने वाले हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही है हॉलीवुड की एक्शन फिल्म मोर्टल कॉम्बैट 2021 की सुपर हिट फिल्म। इस सीक्वल में कार्ल अर्बन, एडलिन रुडोल्फ, जेसिका मैकनेमी और ल्यूइस टैन जैसे सितारे नजर आएंगे। इस बार फिल्म में जॉनी केज की एंट्री होने वाली है जिससे एक्शन और भी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। वही फैमिली ऑडियंस के लिए आ रही दादी की शादी जिसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। इसी बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं भी चर्चा में है। ये फिल्म एक संघर्ष कर रहे एक्टर और एक रिटायर्ड बैंकर के बीच बनते अनोखे रिश्ते की कहानी दिखाएगी। तेज तरार मसाले की जगह यहाँ इंसानी भावना और अकेलेपन को बेहद सादगी से दिखाया गया। और अगर आपको कॉमेडी और मिस्ट्री पसंद है तो द शिप डिटेक्टिव दिलचस्प ऑप्शन है। ह्यूग जैकमैन, ब्रेट गोल्डस्टीन और पैट्रिक स्टीवर्ट स्टारर इस फिल्म में कुछ भेड़े अपने चरवाहे की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए निकल पड़ती है। यूनिक कंसेप्ट की वजह से फिल्म पहले ही चर्चा में बनी हुई है। उधर संजय दत्त की आखिरी सवाल भी इस हफ्ते रिलीज हो रही चर्चित फिल्मों में शामिल है। फिल्म अमित शाह, त्रिधा चौधरी और नमाशी चक्रवर्ती भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। और ये एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें ढेर सारे सत्ता सिस्टम और इंसानी संघर्ष की गंभीर अंदाज में दिखाया गया है। और आखिर में सबसे अलग कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है दाग दाग। अल्ताफ खान और ऋत्विक परीक स्टारर इस फिल्म में एक रहस्यमय मोटरसाइकिल की कहानी दिखाई गई जो बार बार एक्सीडेंट वाली जगह पर लौट आती है। धीरे धीरे गांव वाले उसे चमत्कार मानकर पूजा करवाने लगते हैं। फिल्म अंधविश्वास और समाज की मानसिकता पर दिलचस्प व्यंग है। अब सवाल ये कि इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में कौन मारेगा बाजी। एक्शन, कॉमेडी, इमोशन, हॉरर और सस्पेंस से भरे इस वीक में दर्शकों के पास हर तरह का मसाला जो मौजूद है। फिलहाल हमारा भी समय अब देखते देखते खत्म हो चला है और मिलते हैं ठीक थोड़ी ही देर में 100.1 FM गोल पर और बातें होंगी ढेर सारी चायन क्लासिक्स में। तब तक के लिए नेहा भसीन आपके लिए।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति, मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते हैं।

0: परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: थैलासेमिया एक जीन बाहित असुख। बाबा एवं मायर त्रुटिपूर्ण जीन थाकले छेले ओ मेयेर थैलासेमिया असुख होते पारे। विवाहेर पूर्वे थैलासेमिया टेस्ट करे जेने निन आपनी थैलासेमियार बाहक किना। दुजन बाहक विवाह बंधने आबद्ध हबेन ना। जनस्वार्थे प्रचारित इंडियन सोसाइटी अफ हेमाटोलजी एंड ब्लाड ट्रांसफ्यूशन।
2: रेनबो पे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर छाया लोग। जी हाँ, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम छाया लोग और इसके अंतर्गत आज है फ्राइडे का दिन, तो बातें होंगी सेलुलॉइड सुपर हिट्स की। रात धीरे धीरे अपने रंग गहरा रही है। शहर की सड़कें अब पहले जितनी बेचैन नहीं रही। दुकानों के शटर आधे झुक चुके हैं। कुछ लोग घर लौट रहे हैं, कुछ अभी भी सफर में हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो दिन भर लोगों से घिरे रहने के बाद अब थोड़ी देर सिर्फ अपने साथ रहना चाहते हैं। ऐसे ही एक पल में जब बाहर की दुनिया थोड़ी धीमी हो जाती है, तब फिल्मों की दुनिया और साफ सुनाई देने लगती है, क्योंकि फिल्में सिर्फ पर्दे पर चलती हुई तस्वीरें नहीं होती, वो वक्त को संभाल कर रखने का तरीका भी होती है।

किसी फिल्म का एक डायलॉग, किसी सीन का एक छोटा सा मोमेंट, किसी एक्टर की मुस्कान कभी कभी सालों बाद भी अचानक याद आ जाती है और फिर लगता है जैसे वक्त सच में उतना दूर गया ही नहीं। सेलुलर सुपर हिट्स में आज कोई एक तय थीम नहीं है हमारी, आज बस बातें होंगी सिनेमा की, उस दौर की जब फिल्में धीरे धीरे दिल में उतरती थी, जब किरदार सिर्फ हीरोज नहीं होते थे, इंसान लगते थे, और जब थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी कहानी कई दिनों तक हमारे साथ चलती रहती थी।

दोस्तों, आप इसे किसी को बचपन में देखी हुई रविवार वाली फिल्म याद रहती है? किसी को पहली बार थिएटर जाने का एक्साइटमेंट, किसी को वो समय जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर फिल्म देखता था, और किसी को फिल्म जिसे देखते हुए पहली बार चुपचाप आंखें भर आई थी। सिनेमा का रिश्ता हमेशा इमोशन से रहता है, इसलिए शायद फिल्मों की यादें हमें कभी पुरानी नहीं लगती। और आज के इस मुलाकात में हम उसी सफर पर चल रहे हैं जहां हर मोड़ पर कोई फिल्म मिलेगी, कोई किरदार मिलेगा, कोई डायलॉग, कोई अधूरा सीन और शायद थोड़ा सा अपना अक्स भी

अगर हिंदी सिनेमा के सफर को सच में समझना हो तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस दौर में जब फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट थी लेकिन इमोशंस बेहद रंगीन। 1950s का दौर हिंदी सिनेमा का शायद सबसे ईमानदार दौर माना जाता है। देश नया नया आजाद हुआ था, लोगों के सपने बड़े थे लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं थी, और उस समय के फिल्मों में यही सब दिखाई देता था। राज कपूर जब पर्दे पर आते थे तो वो सिर्फ हीरो नहीं लगते थे, आम आदमी लगते थे। उनकी आंखों में शरारत होती थी और एक अजीब सी उदासी भी। उनकी फिल्मों में शहर था, गरीबी थी, प्यार था और उम्मीद भी। श्री 420 हो या आवारा, उन फिल्मों में एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसान टूटता जरूर था लेकिन हार नहीं मानता था। जी हाँ,

में नहीं समझा, उन्होंने उसे समाज की धड़कन की तरह देखा। और दूसरी तरफ से गुरुदत्त की फिल्मों को देखते हुए हमेशा लगता जैसे कोई बहुत संवेदनशील इंसान दुनिया को चुपचाप तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हो। क्यों, है ना?

गुरुदत्त के फिल्मों को देखते हुए हमेशा लगता है जैसे कोई बहुत संवेदनशील इंसान दुनिया को चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा हो। उनकी फिल्मों में साइलेंस बहुत बोलता था, रोशनी और अंधेरा की कहानी बहुत कहते थे। प्यासा जैसी फिल्म आज भी इसलिए टाइमलेस लगती है क्योंकि उसमें सिर्फ एक शायर की कहानी नहीं थी बल्कि उस इंसान की कहानी थी जो दुनिया में समझे बिन जाने की कोशिश कर रहा था। और कागज के फूल आज कल्ट कही जाती है लेकिन जब रिलीज हुई थी तब लोगों ने उसे उतना अपनाया ही नहीं। कई बार सिनेमा अपने समय से आगे निकल जाता है, लोग उसे बाद में समझते हैं।

तो जैसे कि दोस्तों कह रही थी कि कई बार सिनेमा अपने समय से आगे निकल जाता है और लोग उसे बाद में समझते हैं। विमल रॉय की फिल्मों की बातें करें तो वहाँ रियलिज्म था, सादगी थी और इंसानी रिश्तों की गहराई भी। दो बीघा जमीन जैसी फिल्में सिर्फ कहानी नहीं सुनाती थी, वो समाज का सच दिखाती थी। उस दौर के फिल्म मेकर्स को जल्दी नहीं थी, वो सीन्स को सांस लेने देते थे, किरदारों को धीरे धीरे खुलने देते थे और शायद इसलिए उनकी फिल्में आज भी इतनी गहरी महसूस होती है।

तो दोस्तों फिर आया 1960s और हिंदी सिनेमा ने जैसे मुस्कुराना शुरू कर दिया। पर्दे पर रंग थे, खूबसूरत लोकेशंस थी, रोमांस था, म्यूजिक था और स्टाइल भी। लेकिन मजेदार बात थी कि उस दौर का ग्लैमर भी बहुत ही ग्रेसफुल था। देवानंद स्क्रीन पर आते थे तो ऐसा लगता था जैसे हवा थोड़ी हल्की हो गई हो। उनकी चाल, उनके बोलने का अंदाज, उनके मुस्कान, सब कुछ अलग था कि लोग सिर्फ फिल्म नहीं देखते, उनका अंदाज भी अपनाते थे। कहा जाता है कि लड़के उनके हेयर स्टाइल तक कॉपी करते और शमी कपूर भाई, उनकी एनर्जी तो बिल्कुल अलग थी। बात करेंगे उस बारे में भी, पर उससे पहले अगला गाना।

तो बात कर रहे थे हम शम्मी कपूर के एनर्जी की। जी हाँ, वो उस दौर के सबसे फ्री स्पिरिट स्टार्स में से एक थे। उनके अंदर एक वाइल्ड चार्म था, उनकी फिल्मों में रोमांस भी था लेकिन उसमें एक यूथफुल मैडनेस भी थी। फिर राजेंद्र कुमार, जिन्हें लोग जुबली कुमार भी कहते थे क्योंकि उनकी फिल्में लगातार हिट होती, उनकी आंखों में हमेशा एक सॉफ्टनेस दिखाई देती थी, एक इमोशनल सिंसियरिटी। और अगर हीरोइंस की बात करें तो 60s की एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा में को एक अलग ही एलिगेंस दिया। चलिए बात करेंगे उनके बारे में भी, पर उससे पहले सुन लेंगे अगला गाना।

हीरोइंस की बातें हो रही थी 60s की, नो तंजिने देखते हुए हमेशा लगता था कि अभिनय उनके एफर्ट्स नहीं नेचर है। वहीदा रहमान जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ग्रेसफुल थी कि कैमरा उनसे नजर हटा ही नहीं जाता था। वैजयंती माला जिन्होंने डांस और अभिनय दोनों में अपना अलग मुकाम बनाया। वही माला सिन्हा, साधना, मीना कुमारी, कितनों के नाम ले, हर एक्ट्रेस की अपनी अलग ही दुनिया थी। और शायद इसी वजह से उस दौर की फिल्मों में हीरोइन सिर्फ सजावट नहीं लगती थी, कहानी का दिल लगती थी।

फिर धीरे धीरे आया 70s का दौर और देश के साथ साथ सिनेमा का मूड भी बदलने लगा। अब फिल्मों में गुस्सा आने लगा था, बेचैनी दिखाई देने लगी थी और फिर स्क्रीन पर आए अमिताभ बच्चन, एक ऐसा चेहरा जिसने हिंदी सिनेमा की डेफिनेशन ही बदल दी। उनके आने से पहले हीरोज ज्यादातर चार्मिंग और सॉफ्ट दिखाई देते थे, लेकिन अमिताभ के अंदर एक दबा हुआ तूफान था। उनकी आवाज, उनका गुस्सा, उनकी आंखों की इंटेंसिटी, सब कुछ एकदम अलग।

तो बात कर रहे थे दोस्तों अमिताभ बच्चन की फिल्मों के। जंजीर ने जैसे एक नए दौर की शुरुआत कर दी। उसके बाद दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर, इन फिल्मों में सिर्फ एक्शन नहीं था, उस समय के समाज का फ्रस्ट्रेशन था। एक आम आदमी जो सिस्टम से नाराज था, जो अपनी जगह बनाना चाहता था, और ऑडियंस ने खुद को उस हीरो में देखना शुरू कर दिया। लेकिन इस सिनेमा की इस दौर में सिनेमा ने वॉर्म्थ भी नहीं छोड़ी। ऋषिकेश मुखर्जी जैसे फिल्म मेकर्स ने ऐसी कहानियां बनाई जो बहुत सिंपल थी लेकिन दिल के बेहद करीब। इस बारे में बातें होंगी पर हमारे प्रोग्राम के दूसरे घंटे में हम बात करेंगे ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में। फिलहाल के लिए हम सुनेंगे हमारा अगला गाना, जी हाँ, और इंतज़ार करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं।

घंटे में। तो हम पहुंचे थे ऋषिकेश मुखर्जी की ओर, और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे फिल्म मेकर्स ने ऐसी कहानियां बनाई हैं जो बहुत सिंपल थी लेकिन दिल के बेहद करीब। आनंद, बावर्ची, गोलमाल, चुपके चुपके, इन फिल्मों को देखते हुए लगता है जैसे जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं। आनंद आज भी लोगों को इसलिए याद है क्योंकि उसमें मौत से ज्यादा जिंदगी की बात थी। एक इंसान जो अपनी बीमारी के बावजूद दूसरों की जिंदगी रोशन कर देता। राजेश खन्ना, उनका चार्म उस दौर में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लोग उनके लिए पागल थे, सचमुच पागल। उनकी कार पर लिपस्टिक के निशान तक छोड़ दिए जाते थे। वो हिंदी सिनेमा के पहले सच्चे सुपरस्टार कहलाए। उनके मुस्कान में सॉफ्टनेस थी और आंखों में लोनलीनेस। शायद इसलिए उनके रोमांटिक सीन्स इतने यादगार भी लगते थे।

तो 107 FM रेनबो में छाया लोक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक। और आप सुन रहे हैं सेलुलॉइड सुपर हिट्स आपकी दोस्त पापिया के साथ। और दोस्तों बातें हो रही थी फिल्मों के बारे में, फिल्मों के पूरे सफर के बारे में ढेर सारी बातें हो रही थी इससे पहले।

दोस्तों चले आते हैं सीधे 70s और 80s के दौर में। 70s और 80s के बीच का दौर बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक तरफ बड़े कमर्शियल एंटरटेनर्स थे और दूसरी तरफ पैरेलल सिनेमा भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नशरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ये वो कलाकार थे जिन्होंने एक्टिंग को बहुत रॉ और रियलिस्टिक बना दिया। उनकी फिल्मों में ग्लैमर कम था लेकिन सच बहुत ज़्यादा था।

दोस्तों, अर्थ जैसी फिल्म उस समय बहुत बोल मानी जाती थी क्योंकि उसमें रिश्तों को बिना मेकअप के दिखाया गया। मासूम एक छोटा सा बच्चा, एक टूटता हुआ परिवार और बहुत सारी चुप्पियां। उस फिल्म में कोई लाउड ड्रामा नहीं था लेकिन इमोशनल असर बहुत गहरा था और इजाजत आज भी लोग उसे सिर्फ फिल्म नहीं फीलिंग की तरह याद करते हैं क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका अंत कभी पूरी तरह से नहीं होता है।

दोस्तों 60s 70s से सीधे अब 80s की तरफ आ गए हैं, और 80s का जो कमर्शियल सिनेमा अपने आप में एक अलग दुनिया था। बड़े विलन्स, ड्रामेटिक एंट्रीज, रिवेंज स्टोरीज, फैमिली इमोशंस, सब कुछ थोड़ा बड़ा थोड़ा ज्यादा। लेकिन उसी दौर के कई अनफॉरगेटेबल एंटरटेनर्स भी थे। मिथुन चक्रवर्ती का डांस क्रेज, जितेंद्र की एनर्जी, श्रीदेवी की कॉमिक टाइमिंग। सच बताऊं तो श्रीदेवी जब स्क्रीन पर आती थी तो सीन अपने आप अलाइव हो जाता था। उनकी टाइमिंग, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी स्क्रीन कमांड, वो सच में बहुत यूनिक थी।

फिर आया 90s। जी हाँ, 90s और हिंदी सिनेमा ने शायद अपना सबसे इमोशनल फेज देखा है। ये वो दौर था जहाँ फैमिली फिल्म्स बहुत बड़ी चीज़ थी। अब फिल्मों में बड़े घर थे, त्यौहार थे, शादियाँ थी, जॉइंट फैमिली थी और इमोशंस खुल कर थे। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि ऑडियंसिस को यही सब चाहिए था, क्योंकि उस समय लोग फिल्मों में अपना कम्फर्ट ढूंढते थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ अंत में सब कुछ ठीक हो जाए। और इसी दौर में आए हमारे अपने शाहरुख खान।

तो बात हो रही थी भाई शाहरुख खान की, हमारे अपने एक्टर शाहरुख खान, एक ऐसा एक्टर जिसने रोमांस को नए तरीके से डिफाइन किया। उनके अंदर ट्रेडिशनल हीरो वाली परफेक्शन नहीं थी, लेकिन चार्म बहुत था, एनर्जी बहुत थी। वो वल्नरेबल भी लगते थे, फनी भी और इमोशनल भी। शायद इसलिए ऑडियंस उनसे जल्दी कनेक्ट कर गई। काजोल और शाहरुख की केमिस्ट्री आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक पेयरिंग्स में गिनी जाती है। उनकी फिल्म्स में दोस्ती भी थी, लड़ाई भी थी, मस्ती भी थी और प्यार भी। और उस दौर की सबसे खास बात क्या थी पता है? उसकी इनोसेंस। चाहे रोमांस हो या फ्रेंडशिप, सब कुछ बहुत ही दिल से लगता था।

90s में सलमान खान का अलग चार्म भी तो था, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस एफर्टलेस लगती थी। आमिर खान परफेक्शन की तरफ जाते दिखाई देते थे और अजय देवगन उनकी इंटेंसिटी अलग थी। हर हीरो की अपनी अलग आइडेंटिटी थी और ऑडियंसेस सबको अपने तरीके से प्यार करती। उस दौर की हीरोइंस भी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस वाली थी, जैसे कि जूही चावला का नेचुरल वॉर्म्थ, करिश्मा कपूर का एनर्जी, रवीना टंडन का कॉन्फिडेंस, मनीषा कोइराला की इमोशनल डेप्थ, और हर एक्ट्रेस अपनी अलग पहचान लेके आती थी।

और फिर आया 2000 या 2000s जहां हिंदी सिनेमा ने मॉडर्न होने की कोशिश शुरू की। अब कैरेक्टर्स कंफ्यूज होने लगे थे, करियर, रिलेशनशिप, आइडेंटिटी सब कुछ बदल रहा था। दिल चाहता है जैसे फिल्मों ने फ्रेंडशिप को नए तरीके से दिखाया। उससे पहले दोस्ती फिल्मों में बहुत फिल्मी दिखाई जाती थी, लेकिन यहाँ दोस्त रियल लगे। उनकी फाइट्स रियल थी, उनकी ऑकवर्डनेस रियल थी, उनकी साइलेंस भी रियल थी। और

0: फिर चलिए बात करते हैं फिल्म स्वदेश की, जैसे फिल्म की जहां हीरो दुनिया जीतने नहीं अपने लोगों के पास लौटने की बात करता है। रंग दे बसंती, जहां यूथ की बेचैनी को आवाज दी। लगान ने पीरियड ड्रामा को एक नए लेवल पर पहुंचाया और हिंदी सिनेमा धीरे धीरे ग्लोबल भी होने लगा। लेकिन इतने बदलावों के बावजूद कुछ चीज़ें कभी नहीं बदली। लोग आज भी फिल्म देखते समय रोते हैं, हंसते हैं और अपने फेवरेट सीन्स दोबारा देखते हैं, क्योंकि सिनेमा का रिश्ता लॉजिक से कम, इमोशन से ज़्यादा है। कभी कोई डायलॉग दिल में रह जाता है, कभी कोई कैरेक्टर, कभी कोई अधूरा एंडिंग, और कई बार एक फिल्म हमें हमारी अपनी जिंदगी समझने में मदद करती है।
1: ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

अब चलिए जरा दोस्तों सपोर्टिंग एक्टर्स की बात भी करते हैं जिनके बिना हिंदी सिनेमा अधूरा लगता है, क्योंकि हर फिल्म सिर्फ हीरो से नहीं चलती। जॉनी वॉकर की कॉमेडी, असरानी की टाइमिंग, उत्पल दत्त की प्रेजेंस, कादर खान के डायलॉग्स, इन लोगों ने फिल्म को टेक्सचर दिया है। और विलन्स, उनके बिना तो सिनेमा की कहानी पूरी ही नहीं होती। प्राण, अमजद खान, अमरीश पुरी, अजीत, हर विलन की अपनी अलग पहचान थी। अमजद खान का गब्बर सिर्फ विलन नहीं था, पॉप कल्चर का हिस्सा भी बन गया। और अमरीश पुरी, उनकी आवाज़ सुनते ही सीन का तो मतलब मूड ही बदल जाता था।

दोस्तों, फिल्मों का म्यूजिक भी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत रहा है। कई बार लोग पूरी फिल्म भूल जाते हैं लेकिन उसका म्यूजिक नहीं। एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम, मियां रहमान, हर कॉम्पोजर ने अपने समय का इमोशन कैप्चर किया है। और लिरिसिस्ट साहिर, शैलेंद्र, गुलजार, आनंद बख्शी, जावेद अख्तर, उन्होंने गानों को सिर्फ शब्द नहीं दिए बल्कि जिंदगी दी है। और अगर ध्यान से देखें तो हिंदी सिनेमा सिर्फ फिल्मों का इतिहास नहीं, भारत के बदलते समाज का इतिहास भी है।

तो जैसे कि बात हो रही थी दोस्तों कि अगर ध्यान से देखें तो हिंदी सिनेमा सिर्फ फिल्मों का इतिहास नहीं, भारत के बदलते समाज का इतिहास भी है। कपड़े बदले, घर बदले, भाषा बदली, रिश्तों को देखने का तरीका भी बदला, और ये सब फिल्मों में साफ दिखाई देता है। पहले हीरोज सैक्रिफाइस करते थे, फिर रिबेलियन, फिर रोमांस, फिर कन्फ्यूजन और अब रियलिज्म। हर दौर अपने सवाल लेकर आया और सिनेमा ने उन सवालों को अपने तरीके से दिखाया। लेकिन शायद सिनेमा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो हमें अकेला महसूस नहीं होने देता, क्योंकि किसी न किसी फिल्म में, किसी न किसी किरदार में हमें अपना दर्द दिख जाता है, अपनी खुशी, अपनी उम्मीद, अपनी हार। और तभी से कई बार एक फिल्म ख़त्म होने के बाद भी हम कुछ देर तक चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि कहानी पर्दे पर ख़त्म हो जाती है लेकिन भीतर चलती रहती है। आज OTT का दौर है, कंटेंट बहुत तेज़ी से बदल रहा है, कहानियाँ भी, लेकिन फिर भी पुरानी फिल्मों का जादू ख़त्म नहीं हुआ। आज भी लोग पुराने सीन्स देखते हैं, पुराने डायलॉग्स याद करते हैं, पुराने एक्टर्स के इंटरव्यूज सुनते हैं, क्योंकि नॉस्टैल्जिया सिर्फ याद नहीं होता, एक इमोशनल जगह भी होता है। और शायद इसी वजह से सिनेमा हमेशा जिंदा रहेगा। फॉर्मेट्स बदल जाएंगे, स्क्रीन्स बदल जाएगी, लेकिन कहानियाँ सुनने की इंसानी आदत नहीं बदलने वाली। हम हमेशा किसी न किसी कहानी में खुद को ढूंढते रहेंगे, कभी किसी हीरो में, कभी किसी फील्ड लव स्टोरी में, कभी किसी दोस्ती में, कभी किसी माँ के कैरेक्टर में, क्योंकि फिल्में आखिर में सिर्फ फिल्में नहीं होती, वो हमारी कलेक्टिव मेमोरी बन जाती है। और आज की इस लंबी मुलाकात में अगर किसी एक फिल्म ने, किसी एक डायलॉग ने, किसी एक सीन ने आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी या फिर कोई पुरानी याद वापस ला दी, तो समझिए सिनेमा ने अपना काम कर दिया। क्योंकि अच्छी फिल्में कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस वक्त वक्त पर वापस याद आ जाती है, और शायद यही उनका असली जादू है। वैसे बातें करते करते घड़ी की सुइयां बता रही है कि अब जाने का वक्त भी हो चला है, और मुझे अपनी सारी बातें अब ख़त्म करके कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर ले जाना है आपको। तो जाते जाते केके की आवाज़ में गाइस फिल्म से सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा दिलकश सा गीत, और मिलते हैं किसी और दिन। वादा करती हूँ आपसे कि मिलूंगी किसी और दिन कुछ और बातों और गीतों के साथ। आज बातें नहीं हो पाई, उस दिन बातें भी ज़रूर होंगी आपसे। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बने रहें 107 FM रेनबो के साथ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं।

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनो 107 FM रेनबो सात सुरे सारा दिन सात सुरे सारा दिन तुम्हें सुनो लव जंक्शन भालोबाशार ओनली डेस्टिनेशन लव जंक्शन 107 FM रेनबो ते

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM रेनबो 3 1

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी गाओ।

अब मोरे लैया पार करो दे, अब मोरे लैया पार करो दे, अब मोरे लैया पार करो दे, अब मोरे लैया पार करो दे, हजरत ने